नेपाल को नया आवाज आवाज विहीन को आवाज जन आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ज़।

तेरे साथ मा माया को मधु मास मा लागोस न बारुद की कुक्का तिमीले खादा गास मा अनि पो माया पत्थनी हौ दुबई को।

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।